कुछ तस्वीरें ही आप लोगों को दिखाते हैं। ये आज दोपहर तकरीबन 2 बजे की तस्वीरें हैं। इस गाड़ी में 2 युवक सवार थे। गाड़ी के शीशे चारों तरफ से काले थे।

तारीफ जो हम कर रहे हैं, बस ये कहेंगे कि दुनिया को जीना सिखाने वाले तुम पे मर रहे हैं।

छड़ी न दिखाओ। गलत है सब पर लगे है सही, आंखें बंद कर डरेगी तो नहीं, जो भी मैं बोलूंगा करेगी तो वही, जहां तूने छुआ मुझे वहां तो गई।

0: दिल से चाहने की मुझे सजा देते हो, मैं रोता हूं और तुम मजा लेते हो।
1: तेरी शिकायत कर दूं

0: कहानी बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: Your home for culture, community and unity here on CJMR 1320.

0: पास हो तुम, मेरा नाज हो तुम, रब से मांगी मेरी वो अरदास हो तुम, कैसे छोड़ जाऊं मैं साथ तुम्हारा, खुदा से भी ज्यादा खास हो तुम।
1: Your home for culture, community and unity here on CJMR 1320.

0: बच्चों को चूस कर गुठलियाँ फेंक दी है।
1: पिंड चोटियाँ चर्चा दे विच पहले तेरा वे राजनीति कुछ लोका ने भी पालिया खेरा वे पंडता खाली कितड़ बहनूरे लाई आन गिया हुण नी जज जमानत दिंदा।

0: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.
1: आपको सूचित किया जाता है कि ये गाना सुन के काफियों की फटकर चार होने वाली है, इसीलिए ये गाने को अंदर खाते में ही सुने। धन्यवाद जी।

0: You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.
1: मालूम है मैं शतरंज क्यों नहीं खेलता? क्योंकि दुश्मन को मैं सामने बिठाता नहीं और दोस्त के साथ चाल चलना मुझे आता नहीं।